0: गुड न्यूज एफएम 105.1
1: क्रिश्चियन आध्यात्मिक कार्यक्रम आशा को संदेश।